ကစနေညိုကျေးစုဘီကိုကဘရာစတိုရှဂါမဲတကိဘရာစတိုဝါကင်ကရာဂနေတောဘမဲတပ်ဒေဗစ်ချေကွာညမန်အမွန်လိုက်တဲ့နဘကိုကွေတာဘချေမီတန်လီတိန်ဘူရေတီဆပ်ကောင်တီခရီချုံကိုချေမငရာအင်းတဲ့တနန်တဲ့တန်တောနီတပ်လီတိန်ဝေရီတပ်ချကိကိုစီရတာကေအမီတေအခရဲလီတပ်လီလေမီတေကိုဝေရီတာဝေရီတ်ကိုရာနဘဆာရာတပ်လူလေမီတေနမင်းကြီးကေတာရွတ်तुब चेतावनी की कोशिश जो है नहीं कोशिश विल्सन रेचो विलियम मेरिलिन स्टैनली एरिक अकबेनाड तुब चेत करा नेबो एस्ता किगेट रेबेका मिते आकालिली किमेतो मानिगो त्यो ताबियोनिस चेपुआन क्वांडाबनेली एमी लोना केनेडी सुसन ग्लाडिस इयान केविन अकब्रायन कोबागाच मचोरोनी केसेरे किया एक आयु मानने के इंकासी तब सुमुक्तर गीत मुतरा हुए तब सिसीत के नियनी चकिता रहते बिली तब कोनोरेनी एंका चे मितान लिते येनी को गेते साई सिसीत ने बबे तेंपेसा ना बने बता रहते को 0722-685-207 को इची रोतिच सी किम गेनो तेतात गीने बोरता नी एंकासी तब मुतर गीत सब आरा हुए तब सिसीत के नियनी एंके आई सी लिते इन मिशन साउथ कोनोरे निके आइज मोस्टर की सिसित आरावे तब सिसित के निनी अंगा को को तब चे मितान लितेन मुते मिसिंग अगोबा मेनी के बरास्ते वॉकिंग करोगे ने तब मे तब डेविड जे क्वानी मान लाइट ने बको को तब चे मितान लितेन बुरेति सब काउंटी केरिचो काउंटी को चे मुंगारा इंडे तिने नदी एने ताउ नि तब लितेन वेरी तब चे की को सिरतो के आ मिते आकरेली तब ली ले मिते को वे रिताब कोरा सारा तबलू ले मिते ने मेने के तारवेत तुब चेताम ने की कुसिरता जोएली ने कुसिरता विल्सन रेचो विल्स विलियम मेरिलिन स्टैनली एरिक अकबेनाड तुब चेत कोरा ने बो एस्ता किगेट रेबेका मिते आकलिली किमेतो मानिंग ओतियो ताब यूनिस चे पुआन क्वांडाब नेली एमी लोना केनेडी सुसन क्लाडिस इयान केविन अक ब्रायन को बगाच मुचगरो ने केसेरे किया है कायु मानने के गासी तब सुमक्तर गीत मुतरा हुए तब सिसीत के नीनी चकिता रहते बिल तब सप्ताल्या को नोरेनी एंगा चे मितान लिते इन कोंगेते साई सिसीत ने बपेत एंपेसा ना बने बता रहते को 0722-685-207 को इचिरो तिसी किम गेनो तेता तक इन बोरता नियं एंगे आई सी लिटे इन मिशन साउथ कोनोरे निके आई जुमा मोस्टर की सिसी तरावे तब सिसीत के नीनी एंगा को कोई तब चे मितान लिटे